0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा सरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ। ग्लोबल आइडी बैंक, सबैका लागि बैंक। डिशो फाइबर नेट।

0: तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
0: हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फ्रेंड्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा।
2: चलो ज्योति।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल?
1: वो रहे सामने।
2: माई नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो की हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। विल बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेंड इट टू मी राइट अवे।
0: जी।
5: द एंटायर विलेज वुड बेयर विटनेस टू दिस।
6: आरव, सेंड इट अप।

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो.
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में उतर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती. हमें मिलना है, हम देखो एक न एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.

0: গুরু এত পরে সা তুমি নটার হচ্ছে জিও দুর্বিভার সহায় বসু হবে না আচ্ছা তুমি সঙ্গ মহন যাচ্ছ কি বলিস কমপ্লেন কর
1: कतै तपाईका बालबालिकामाथि पनि यस्तै प्रकारका दुर्व्यवहार भएको त छैनन्। गलत व्यवहार हुन्छ भने चुप लाग्नु समाधान होइन। दुर्व्यवहार सहेर बस्दा ठूला हिंसाका घटना निम्तिन सक्छन्। कोही विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफूमाथि भएका कुनै पनि दुर्व्यवहार बारे खुलेर कुरा गरौं, ढिला नगरौं, आजैबाट शुरू गरौं।